नमस्कार नाशिक 101.4 FM आकाशवाणी नाशिक। यह मंगलमय प्रभाती मना जगाभरात भक्ति स्वर गंधाचा दरवळ भक्तिधारा।

0: यह नंतरचा कार्यक्रम बसवंत गार्डन परिसर।
1: आप अपने बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना पसंद करेंगे? मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम या फिर CBSE? तो देरी क्यों? आत्मा मालिक शैक्षणिक एवं क्रीडा संकुल कोकम ठाण में सभी ऑप्शंस खुले हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट फीचर्स और कम फीस। बस चॉइस आपको करनी है। आत्मा मालिक स्कूल्स कोकम ठाण, एडमिशन ओपन।

0: के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार

0: में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी

0: कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग

0: दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉक स्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाज़ों में, अन्विता गुप्तन के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं ही, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए। लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आती। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: आसमां को चूमे जब चले तो।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ
1: मां, बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते ही प्यार के।

0: ये खामोशियां, ये तन्हाइयां।
1: इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थीं। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन

0: 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

देरी क्यों? आत्मा मालिक शैक्षणिक एवं क्रीडा संकुल कोकम ठाण में सभी ऑप्शंस खुले हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट फीचर्स और कम फीस। बस चॉइस आपको करनी है। आत्मा मालिक स्कूल्स कोकम ठाण। एडमिशन्स ओपन।

0: शाहिद पुंडलिक फरंदे आणि सहकारींनी गायलेलं लोकगीत आपण ऐकलं.
1: आप अपने बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना पसंद करेंगे? मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम या फिर CBSE? तो देरी क्यों? आत्मा मालिक शैक्षणिक एवं क्रीडा संकुल कोकम ठाण में सभी ऑप्शंस खुले हैं. बेस्ट स्कूल, बेस्ट फीचर्स और कम फीस. बस चॉइस आपको करनी है. आत्मा मालिक स्कूल्स कोकम ठाण. एडमिशन्स ओपन.
2: सकारात्मक ऊर्जेचा अखंड झरा अडावतकर ज्वेलर्स जगूया आनंदी. ऐका दररोज सकाळी 6:45 FM 101.4 MHz वर आकाशवाणीच्या नाशिक केंद्रावर.
3: नीट JEE की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस, कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ. बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए भेज दे
4: atmamalikonline.com. आत्मा मालिक
5: ये. अधिक महिन्याचा महोत्सव कांकरियांचा.
6: विष्णूचं रूप असलेल्या जावयासाठी चांदीचं वाण घ्यायला या
5: आणि 30 ग्रॅमच्या पुढच्या खरेदीवर मिळवा 500 रुपयांचं गिफ्ट वाउचर.
6: शिवाय रोज 3 भाग्यवंतांना मिळणार आकर्षक भेट
5: आणि बंपर लकी ड्रॉ मध्ये जिंका होंडा शाईन आणि होंडा ऍक्टिवा.
6: यासाठी तुमची वाट बघतोय
5: अधिक महिन्याचा महोत्सव कांकरियांचा.
6: कांकरिया ज्वेलर्स, ब्रजभूमी,

0: परीक्षक फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक पिंपरी चिंचवड, सांधे दुखी, गुडघे दुखी आणि मणके दुखीवर विना ऑपरेशन आणि 100% खात्रीशीर उपचार आहेत. संपर्क 95 95 24 25 59. डॉक्टर परीक्षित फेगडे यांचे सिद्धिविनायक क्लिनिक 95 95 24 25 59.
1: आप अपने बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना पसंद करेंगे? मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम या फिर CBSE? तो देरी क्यों? आत्मा मालिक शैक्षणिक एवं क्रीडा संकुल कोकम ठाण में सभी ऑप्शंस खुले हैं. बेस्ट स्कूल, बेस्ट फीचर्स और कम फीस. बस चॉइस आपको करनी है. आत्मा मालिक स्कूल्स कोकम ठाण. एडमिशन ओपन.

0: आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस, कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए भेज दे
1: atmamalikonline.com। आत्मा मालिक
2: कमी वेळा जास्त नफा,
3: बस एका क्लिक वर कमाल है।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका, RBI सांगते
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।
6: अधिक महिन्याचा महोत्सव कानकरियांचा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नाशिक केंद्रावरून अवश्य ऐका सकाळी 7:50 च्या दरम्यान।
7: नाती जपण्या आयुष्यभराची
8: परंपरा ही अधिक मासाची।
7: अडावतकरांच्या चांदीच्या वस्तूंनी
8: अधिक मास होणार आता अधिक खास।
7: अडावतकरांकडे चांदीचे दागिने आणि वस्तूंच्या घटनावळीवर
8: 50% भरघोस सूट,
7: आजच भेट द्या।
8: विश्वास नाशिककरांचा।
7: अडावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक।
9: स्वरूप कृषीवाणी, आधुनिक शेतीचं मार्गदर्शन, हवामानाचा शेतीवर होणारा परिणाम यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तर ऐका स्वरूप कृषीवाणी मध्ये रोज सकाळी 6:40।
10: विश्वासाचं दुसरं रूप स्वरूप।
0: नीट JEE की तैयारी कर रहे हो? आत्मा मालिक देश का नंबर 1 आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रेसिडेंशियल क्लासेस, कॉलेज और सब सुविधा एक ही जगह दे रहा है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है तो आत्मा मालिक में एडमिशन लेना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए भेज दे
1: atmamalikonline.com।
11: आत्मा मालिक
6: अधिक महिन्याचा महोत्सव कांकरियांचा।
7: विष्णूचं रूप असलेल्या जावयासाठी चांदीचं वाण घ्यायला या
6: आणि 30 ग्रॅमच्या पुढच्या खरेदीवर मिळवा 500 रुपयांचं गिफ्ट वाउचर।
7: शिवाय रोज 3 भाग्यवंतांना मिळणार आकर्षक भेट
6: आणि बंपर लकी ड्रॉ मध्ये जिंका होंडा शाईन आणि होंडा ऍक्टिवा।
7: यासाठी तुमची वाट बघतोय
6: अधिक महिन्याचा महोत्सव कांकरियांचा।
7: कांकरिया ज्वेलर्स, ब्रजभूमी, उंटवाडी, नाशिक।
12: आप अपने बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना पसंद करेंगे? मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम या फिर CBSE? तो देरी क्यों? आत्मा मालिक शैक्षणिक एवं क्रीडा संकुल कोकम ठाण में सभी ऑप्शंस खुले हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट फीचर्स और कम फीस, बस चॉइस आपको करनी है। आत्मा मालिक स्कूल्स कोकम ठाण, एडमिशंस ओपन।
1: आत्मा मालिक ये।
13: आकाशवाणी से नाशिक केंद्र है। आता ऐकूया NCERT यांचा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को

0: बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी
1: बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।

0: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
1: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
0: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
1: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
0: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक।

0: तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया।

0: युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं।

0: विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो दुर्गा माता की,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: क्या बात कही है?
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी, सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं, लेकिन सामजी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूं।
5: सामजी, सामजी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने

गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: एनसीईआरटी यांचा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण आता ऐकला आकाशवाणीच्या नाशिक केंद्रावरून। सकाळचे 11:04 झाली आहेत। आता 12 विविध भारतीचे कार्यक्रम सहक्षेपित करत आहोत आणि 12 ते 1 या वेळेत वनिता मंडळ हा कार्यक्रम अस्मिता वाहिनीवरून आम्ही सहक्षेपित करू। सुरुवातीला विविध भारती।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गज़ल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गज़ल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ है, हसरत तिरमिज़ी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा, जो कि है ये मिलन ख्वाब सा, इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्र

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से ये नज़्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज़्म।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अस्मिता वाहिनी 5600 मीटर अर्थात 558 किलोहर्ट्ज वर आपण हे कार्यक्रम ऐकत आहात। आता वेळ झाली आहे कार्यक्रम वनिता मंडळ यांची। आकाशवाणी पुणे निर्मित कार्यक्रम वनिता मंडळ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियाँ जैसे अपनी धारा के संग चलती हैं, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे

श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहाँ ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करती है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां

जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं, ऐसे ही जो शब्द है ना एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर ये। सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरात नर वा पाए बोराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती, दूसरों के कदम के लिए अगर सबके

कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है। आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना? जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है। प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

0: जल।
1: ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द

उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही, नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए। कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख की जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने एक बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खोना दूँ इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था। तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटो स्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सब के बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके

ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
4: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29

0: जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम

0: प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है।

0: तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री

0: हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हिरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: हाँ, तो गरिमामय
0: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बनाए, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय के साथ साथ कला का यह रूप

0: फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ, फिर इसमें पुष्प पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं, और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
0: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं, ये दिव्य

0: डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
1: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
1: जी,
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत है,
1: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी 2 साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल।

0: मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
1: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
1: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
0: बिल्कुल
1: हो रहा है।
0: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है,
1: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
0: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों
1: को। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे गेम बना रहे हैं ना वो लोग
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है।
1: हाँ,
0: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको फायदा,
1: और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
0: और सबसे बड़ी बात है दीपा कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं मोबाइल।

0: लाने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा उससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आरती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आँखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आँखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहा है कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो

0: उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल रही है तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सही
0: जब तक आप
1: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
0: जी,
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
0: जी, बिल्कुल।
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नई सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
0: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
1: जी।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध आरती भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली

0: या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है जो, किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए। आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है, तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें 1/2 घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे 1/2 घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर 1/2 घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए, फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते

0: हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
1: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: है, समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पर भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, दो 1923 में बनी थी और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है। और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड

0: कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर. और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर
1: अट्रैक्ट
0: काफ़ी
1: करती है।
0: अट्रैक्ट करती है. तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ. लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है. और इमिडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया. तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क. आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है. और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था. तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी. बट
1: जी,
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की.
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो ह्यूमैनिटी के ऊपर. मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी. मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही. रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं. एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं. कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है. अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो. आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए. क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है.
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं.
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे
1: जी,
0: रिलेट होता है.
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में जी। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर है, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है
0: जी।
1: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके, पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है।

डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं. वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया. तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है. आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको पावर करती है. पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे.

0: मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे. बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा. बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे. ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है. वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे.
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अब के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही. ऑफ कोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे. तो आई थिंक

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं

0: रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वाज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन अगर कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
1: जी।
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है। और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में

0: कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो वैसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो ये बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं.

0: को टाइम मिली उसका फॉलो अप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है.
0: ये बहुत खतरनाक है. अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में. चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी. एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था. लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑल द मोस्ट 6-7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी. अभी तो टाटा में भेजा हुआ है. बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है. ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है. ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है. बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके. क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली. बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी.
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए. तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी.
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ. और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है. उनको हर जुगाड़ आता है. इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी.
1: सेम दवा.
0: हाँ, सेम दवा. सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, हर घर की है. क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं. बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है. तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया. और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल है. क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही. क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है.
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता. और यहाँ एक और गाने की जगह है और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं.
0: मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं.

0: बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है, पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल है, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: जी,
1: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा चीज है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर

Anita Dubisi. Recording engineer Kiran Bang. Sampadan Kajal Badarge. और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो ना हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना।

सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है, हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटकेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं।

नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगु करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

सुना सुना सा होगा, कहीं कुछ कमी महसूस होगी। यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: युवक मित्रांसाठी कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र, अस्मिता वाहिनी आणि AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आपण ऐकत आहात. यानंतर ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून हिंदी आणि इंग्रजीतून बातम्या सहक्षेपित केल्या जातील.

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में

0: हैं फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम का शेष भाग। 7 रंग के सपने फिल्म का ये गाना है, समीर का लिखा हुआ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीत नदीम श्रवण का।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जान

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इन संदेशों से पहले आप सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार के बोल राजेश रोशन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं इतिहास फिल्म से समीर की रचना। संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है, गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के।

और अब आज के तराने नए पुराने कार्यक्रम के आखिर में हम किसी से कम नहीं फिल्म की कव्वाली आपको सुनवाते हैं। कलाम मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं झरोखा। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। इस कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे फिल्मी भजन संध्या रंजन कार्यक्रम में। जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में विविध भारती का यह कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7 बजे 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत। सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग। हवा महल में रात 8 बजे नाटक सुनिए यादों की परछाइयां, आज इसका तीसरा भाग प्रसारित होगा। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। नए फिल्मी गीत चित्रलो कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर। आपके लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9 बजे। फिल्मकार सुनील दत्त पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 9:30 पर और छाया गीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। कल सुबह 6:05 पर भक्ति रचनाओं पर आधारित हमारा कार्यक्रम प्रसारित होगा वंदनवार। उसके पश्चात 6:35 पर सुनिए

श्री राम चरितमानस गान संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर कर्नाटक संगीत पद्धति के राग श्रृंखला की छठी कड़ी सुनिए, आमंत्रित कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। त्रिवेणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। कल का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक महबूब खान पर। यही कार्यक्रम रात 9:30 पर पुनः प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11:00 सुनिए रंग तरंग। मध्याह्न 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00। दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी का पुनः प्रसारण। 2:30 पर आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। सखी सहेली, कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 3:00। कल के विषय हैं अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत नारियल अम्मा के नाम से परिचित के चल्लमल की कहानी। उसके बाद मुझे कुछ कहना है गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स दोपहर बाद 4:00 सुनिए हेलो फरमाइश। तराने नए पुराने, कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। शाम 7:00 जयमाला। कल शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में सुनिए अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत। कल रात 8:00 हवा महल में यादों की परछाइयां, इस नाटक का चौथा भाग प्रसारित होगा। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। चित्रलोक का प्रसारण रात 8:15 पर। और रात 10:00 सुनना न भूलिए छाया गीत।

हम बोल रहे हैं विविध भारती से, प्रस्तुत है संध्या रंजन। फिल्मी भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में आज ये पहली रचना है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में संपूर्ण रामायण फिल्म से संगीत वसंत देसाई का।

0: हेमंत कुमार के स्वर में गंगू फिल्म की रचना आप सुन रहे थे। इसी के साथ संध्या रंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग वृंदावनी सारंग, आज आपको सुनवा रहे हैं राग धनाश्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को सादर प्रणाम। पिछली कड़ी में मैं आपको 19वीं शताब्दी के

महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा हिंदी भाषा में रचित बंदिशों के बारे में बता रही थी। आज उनकी एक और कृति पेश करती हूँ जो राग धनाश्री में है। इसकी शैली भी कुछ ध्रुपद जैसे है। साहित्य इस प्रकार है। शीस गंग भस्म अंग अर्धंग गौरी संग, यानी कि बंदिश शिव जी की स्तुति में है। वैसे तो स्वाति तिरुनाल विष्णु भक्त थे और अधिकतर कृतियां पद्मनाभ स्वामी की स्तुति में हैं। तिरुवनंतपुरम में जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वह बहुत ही मशहूर है और महाराजा के परिवार के सदस्य सदियों से यहाँ की विशेष पूजाओं में भाग लेते आए हैं। एक और बात भी बताना चाहूँगी, हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल ने जो कृतियाँ बनाई उनके अलावा 42 श्लोक, एक नवरत्न मालिका, 4 राग मालिकाएँ, 39 संस्कृत बंदिशें, ये सब भी उन्होंने बनाई। एक बंदिश तो कन्नड़ा भाषा में भी है और एक है मलयालम में। एक और है मणि प्रवालम, अर्थात अनेक भाषाओं के मिश्रण से भी बनाए हैं। इतना सब उन्होंने 34 वर्ष की आयु में ही बना ली थी। तो आइए अब आपको सुनाती हूँ धनाश्री राग में एक ध्रुपद शैली में बनाई हुई कृति। धनाश्री राग भीमपलास से मिलता जुलता है और स्वर दोनों में एक ही जैसे लगते हैं। तो सुनिए शीस गंग, स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृति।

ये थी धनाश्री राग में महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक ध्रुपद शैली की बंदिश। धनाश्री राग ज्यादातर भीमपलास राग से मिलता जुलता है। अब सुनिए एक फिल्म संगीत जो राग भीमपलास के स्वरों पर आधारित है।

राग भीम पलासी पर आधारित ये गीत था। फिल्म राम राज्य से आवाज थी सरस्वती राणी की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी

0: कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा।
3: मुंबई केंद्र, ठीक 7 वाजता प्रादेशिक बातम्या प्रसारित होतील।
4: रसिक हो, चांदण्या रात्री अंगणात स्वरांची पावलं उमटतात आणि त्यांच्या स्वागताला शब्द प्रगटतात। कल्पनाच किती रम्य आहे नाही, आणि हीच कल्पना रंगवली आहे कवी सदानंद डबीर यांनी स्वरांजली या सुगम संगीताच्या विशेष कार्यक्रमात या महिन्याच्या गीतात। संगीतकार आरोही आगरकर यांचं संगीत सुरेलपणे साकारलंय गायक कलाकार श्रीरंग भावे आणि भाग्यश्री पांचाळे यांनी। अवश्य ऐका मे महिन्यात दर शनिवारी सकाळी 9:30 वाजता सुगम संगीताचा विशेष कार्यक्रम स्वरांजली आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। स्वरांजली।

और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का तीसरा भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।
1: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
2: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
3: ओह नो,
1: ओह यस,
3: ओके ओके, क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया है

0: तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी।

0: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
1: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
0: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
1: ये लो।
0: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
1: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
0: कहाँ कीवी, तुम्ही को तो ढूंढ रहा था।
1: I don't believe you.
0: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
1: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
0: ओ सुनो अली बाओ,
1: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी, ओह सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
1: मैं अभी आई।
2: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
0: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
0: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
2: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
0: जाहिर है पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
2: डोंट बी सो सीरियस, आओ बाहर चलो। नीना आई है?
0: ओ यस, ये साथ उसके डैडी आए हैं क्या?
2: डोंट बी स्टूपिड, उसका हस्बैंड है।
0: नहीं यार, ये तो उम्र में नीना से कम 20 साल बड़ा लगता है।
2: लगता ही नहीं है भी।
0: सच? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
2: क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता?
0: कैसे हो सकता है, मैं नीना को अच्छी तरह से जानता हूँ।
2: ये मुझे नहीं मालूम।
0: अरे भाई किसी जमाने में बहुत दोस्ती थी हमारी।
2: अच्छा।
0: जानते हो हमारी पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। उन दिनों मैं जर्मनी से लौटा ही था। एक रोज शाम को ग्रीन लाइट के बाहर मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
3: कीवी का?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, कीवी से तो मुझे नीना ने ही बाद में इंट्रोड्यूस करवाया था, कोई और थी, तुम नहीं जानते उसे।
2: हाँ तो फिर क्या हुआ?
0: मैं वहां खड़ा इंतजार कर रहा था, काफी देर हो चुकी थी, वो नहीं पहुंची। तभी अचानक मैंने देखा एक लड़की भी वहां मेरी ही तरह खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी, वो भी काफी देर से खड़ी खड़ी बोर हो चुकी थी। एक आध बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। तब अचानक मेरी तरफ वो बढ़ी और मैं
4: आप शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं?
0: जी जी हाँ, किसी को यहाँ 6:30 बजे आना था।
4: और वो नहीं आई?
0: आई
4: ऑफ कोर्स, अगर किसी लड़के को आना होता तो आप 10 मिनट इंतजार करके चले गए होते, और अगर आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे होते तो आप इतने बेचैन न होते।
0: आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी
4: है। अच्छी होती तो मैं वक्त पर न पहुंचकर आधा घंटा लेट आता।
0: आई सी, आप भी किसी का?
4: जी हाँ, उसे भी 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो वक्त पर पहुंच भी सकते हैं या नहीं।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर कोई काम निकल आता है।
4: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रांग होनी
0: चाहिए। देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी।
4: मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं, अकेले बैठना बहुत ऑड सा लगता है।
0: मुझे भी, इसीलिए तो आइए ना।
4: चलिए।
5: सर
0: दो कॉफी, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे?
4: नो थैंक्स, बस कॉफी ठीक रही।
0: बस दो कॉफी ले आप।
5: यस सर।
4: जगह मुझे बहुत पसंद है, आप यहाँ अक्सर आते हैं?
0: नहीं नहीं, यूं ही कभी कभी। आप जिनका इंतजार कर रही थी
4: वो? फ्रेंड ऑफ माइन।
0: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर वो इस वक्त आ जाएं तो आपको मेरे साथ बैठा देखकर बुरा तो नहीं मान जाएंगे?
4: ओह नो, वो क्यों बुरा मानने लगा, उससे मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 बजे की थी, 7 बजे की नहीं। आप अपनी बात कीजिए।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
4: शुगर?
0: एक चम्मच।
4: गुड, मैं भी कॉफी में सिर्फ एक चम्मच चीनी पसंद करता
0: हूं। मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है, वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना ही पसंद करते हैं।
4: तो आप यूरोप हुआ है?
0: जी हाँ, मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया था।
4: क्या करते हैं?
0: मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया।
4: आई सी, आपने फॉरवर्ड मोटर्स का नाम तो जरूर सुना
0: होगा। जी हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म है,
4: मेरे डैडी ही उसके मालिक हैं।
0: ओह आई सी।
4: कॉफी अच्छी है?
0: जी हाँ जी हाँ।
4: मैं भी डैडी के साथ अमेरिका गई थी, लौटते हुए यूरोप जाने का भी इरादा था, लेकिन डैडी को जल्दी इंडिया वापस पहुंचना था, बस चांस ही नहीं मिला।

0: यहाँ कितना कुछ है देखने को।
1: बहुत, लेकिन मैं भी ज्यादा घूमा नहीं, बस पढ़ता ही रहा।
0: Really? How unlucky.
1: आपके दोस्त आए नहीं?
0: आपकी भी तो
1: वो तो बाहर से ही लौट गई होंगी।
0: Oh, I'm so sorry. मेरी वजह से आप
1: नहीं नहीं आपसे मिलना भी तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी।
0: आपने तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पूछा।
1: तो आइए अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। मेरा नाम विक्रम है।
0: मीना, मैं साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी।
1: उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे।
0: ओह नो, बल्कि आपने तो मुझे और बोर होने से बचा लिया। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
1: अभी?
0: नहीं, मेरा मतलब है बिजनेस या
1: बिजनेस के लिए पैसा चाहिए मैडम, वो मेरे पास नहीं है। सर्विस कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ।
0: बिग शॉट,
1: बस रोटी पानी का खर्चा चल जाता है।
0: एक पर्सनल सवाल पूछूं?
1: पूछिए।
0: आप एंगेज्ड हैं?
1: ओह नो। आप?
0: डैडी जल्दी ही मेरी शादी कर देना चाहते हैं, पर मैं अभी नहीं चाहती।
1: ठीक ही है, यू लुक स्वीपिंग।
0: आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं मिस्टर विक्रम।
1: अब आपकी और हमारी दोस्ती हो गई है। मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकती हैं। वैसे कॉलेज में यार दोस्त मुझे विकी कहकर भी पुकारते थे।
0: अच्छा?
1: जी हाँ।
0: सच बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज डिनर है, कुछ लोग आ रहे हैं।
1: ओह श्योर। बेटा,
0: अगर आप बुरा ना माने तो मैं दे दूँ।
1: आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं।
0: अच्छा, फिर कभी मिलिएगा, कभी घर पर आ जाइए या टेलीफोन ही कर लीजिए।
1: ओह श्योर, आपसे तो हमेशा ही मिलकर खुशी होगी।
0: बाय,
1: गुड नाइट। बस फिर टेलीफोन कॉफी अपॉइंटमेंट करते करते हम लोग लगभग रोज ही मिलते। एक आध बार कमला, तुम नहीं जानते हो,
2: वही जिसका तुम सब इंतजार कर रहे थे।
1: हाँ, वो भी नीना से मिली, लेकिन दोनों के बीच इतना फर्क था कि निभ ना सकी। उन दिनों मेरे दिमाग में अजीब हलचल थी, समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है, किधर जाना है। कमला ने कभी मुझसे साफ साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा था, फिर भी मैं जानता था कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। नीना सिर्फ दोस्त थी, शादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी उससे मिलने को, उससे बातें करने को बहुत मन करता था। हम लोग ग्रीन लाइट पे घंटों बैठे बेशुमार बातें किया करते। मुझे याद है एक रोज मैंने इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ी।
0: शादी विकी, मैं समझती हूँ एक अरेंजमेंट है, इसकी बुनियाद किसी भी सेंटिमेंट, मेरा मतलब है भावनाओं पर नहीं रखनी चाहिए। आज के जमाने में चाहे अच्छा समझ लो या बुरा, जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। और ये जो फजूल लव प्रेम इश्क मोहब्बत की बातें हैं ना, सिर्फ अनपढ़ लोगों को ही अपील करती हैं, मैं कम से कम मुझे तो नहीं करती।
1: लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मैं कमला को नहीं भूल सकता।
0: क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और उसकी भी शादी नहीं हुई, और फिर भूलने की जरूरत भी क्या है, शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हो।
1: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है।
0: हो सकता है, बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना, बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती है, और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें। देखो ना, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में उठना बैठना है, तुम्हारे इंटरेस्ट और उसके शौक एक से होने चाहिए। भाई बुरा ना मानना विकी, बट कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू।
1: नहीं, बुरा मानने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कई लिहाज से मैं खुद भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं कितनी बातें कर सकता हूँ।
0: इसीलिए ना कि इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब अगर हमारी भी तुम्हारी शादी हो जाए तो हम दोनों की।
1: छोड़ो, ऐसी बात सोचने से भी क्या फायदा।
0: क्यों नहीं विकी, आखिर क्यों नहीं? तुम इसलिए ये बात कहते हुए डरते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ?
1: ये भी एक अहम वजह है।
0: गरीब लड़की अगर किसी अमीर आदमी से शादी करके उसकी दौलत में शेयर कर सकती है, तो तुम मेरी दौलत से भागते क्यों?
1: छोड़ो नीना, मुझे उलझन होती है।
0: तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है विकी?
1: हो सकता है, लेकिन जाने क्यों मुझे ये लगता है ये कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारे डैडी,
0: मेरे डैडी को मेरी खुशी चाहिए, और अपनी खुशी के लिए मुझे तुमसे बढ़कर और क्या मिल सकता है।
1: नीना,
0: सिर्फ एक बार विकी, प्लीज मेरे साथ चलकर डैडी से मिल लो।
1: अच्छा,
0: अभी, आज ही, इसी वक्त।
1: इसी वक्त? ये कौन सा वक्त है, डिनर टाइम हो रहा है।
0: नहीं नहीं, अभी अभी।
1: अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, चलो।

यादों की परछाइयां, इस नाटक का अभी आपने तीसरा भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग कल सुनिएगा हवा महल कार्यक्रम में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ान फिल्म के गीत से। संगीतकार अमित त्रिवेदी, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य,

कार्यक्रम का अगला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में है, शकील आजमी के बोल, चिरंदन भट्ट का संगीत, फिल्म का नाम 1920 एविल रिटर्न्स।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मल।

शान की आवाज में आप सुन रहे थे तुम मिलो तो सही। इस फिल्म का शीर्षक गीत इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीतकार संदेश शांडिल्य। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बेवकूफियां इस फिल्म के लिए अन्विता दत्त का लिखा ये गीत श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में है। संगीतकार रघु दीक्षित।

नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार राजशेखर, संगीत विशाल मिश्रा का। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब

0: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी

0: प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और

0: विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से। आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म के ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का।

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: तंबाकू जानलेवा होता है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी की वो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी 909 इस फिल्म का गाना, एसएच बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओपी नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

कैफी आजमी के बोल खयाम का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी खत फिल्म का गीत। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।

0: ही बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: माँ को चूमे जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो

से सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा कोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ।
1: बोला, आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में हड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां ये तन

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की माँ नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहाँ, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

0: जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नतें करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।
1: दिल

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है, न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम आदेश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य हो।

होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज्जुआ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।